को मॉडर्न बूट करने के बारे में चर्चा की। इसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा,

शाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक एनआर पोकर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक

में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से फॉर्मुस्टर डमरू मध्य ने सुरक्षित

par un métier, parce qu'elle va parler sur les fois que nous sommes vus, c'est pas avec eux. सिंधी से लेकर जाने का मैं श्रृंखला से ने संगीत में तबले का दौर बहुत आज कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खत्री प्रस्तुति मनीष सत्यम जी

ज्यादा हो चुकी है। कवि प्रदीप की सुपुत्री और उनके सरकार अंकुल प्रदीप के मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों के महफिल, 1 बजे से लीला सफर, 2 बजे पूरी,

طرف فرش نیم صدا بهار نخوش زندگی کوچیک و نیم کوچک کم سخت است.

innocent?

आपके फनकार रात नौ बजकर 30 मिनट आपके फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

पत्नियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गई।

0: संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
1: जी,
0: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
1: अभी ये जो है जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल, ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है। अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है। तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा, मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतजार करना होगा। कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न तीन अकिन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो इसमें सुलभता है, आसानी है। तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है,
0: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
1: हाँ, कई सारे रूप है। तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं, तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल कहरवा है धागे नती नकदी नती। अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है, तो वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक आध दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ।

0: सारे रूप
1: क्या बात है।
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये कहवा बज रहा है। नहीं, वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, उसको कोई नाम न दे हम लोग।
1: तो ये अलग ढंग में जो कहरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है, तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं। कुदरत फिल्म का गीत है तूने और रंगीले का जादू किया लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है

कुदरत सिंह का गीत है सोने और रंगीले का जादू किया लता जी के सर ने, और दूसरा गाना है मिलन सिंह का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में कहरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की तरह।

0: फैमिली की तेरहवा साल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है।
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया है एक तेहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में घुमावी ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको तेहरवा ही कहते हैं। तो तेहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी
0: जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है, ये बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक दुमावी ताल का प्रयोग होता है। तो वो जो प्रयोग है तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन

0: इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है जी, लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है। तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे दुआई कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी उस ताल का जिक्र किया कि धुमावी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन बीता,
1: सावन बीता जाए। तो इसमें जो धुमावी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,

उसका ही सुगम स्वरूप जो है ललित स्वरूप,

कृष्ण से बोलते हो प्रहलाद भगत राम का संगीत था। इसे सुने विक्रम बाद फिल्म का गीत समुद्र महपुर की आवाज़ में संगीतकार हैं।

और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने

0: ovviamente la permanenza non fa più chiamata, ma se ne siete ricevuti con anche vinti.
1: उनकी एक आंटी हमने कक्षा छह में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके घर उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख

0: देखो सीढ़ी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सारे फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, उसकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा आइए लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: very important pillar of any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर
1: बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता
0: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए

Jesus now.

0: going. Don Finn says he's up today. You check in, Jen. Cindy's got you. And I'm due on the news.
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इंफेक्शन जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड टू योर डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारी कम।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत हो गए तो एसिडिटी

nunca vi ele estar lá.

Mm-hmm.

Sunday

0: साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तीन

उन प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।

का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1970 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर

को हराते

Thank you.

दीजिए, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही

कमरों का मकान है, आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोच कर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है।

करोड़ गठबंधन के मंत्रियों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए गठबंधन के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से होकर चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने तथा संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने का आह्वान किया। मंत्री सुब्रत कुमार सोहू ने दोनों सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की

0: सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहाँ जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले वाम दल, पूरा गठबंधन एकजुट है।
1: राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी के आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं कल देर शाम प्रदेश कार्य

I'm going to go. I'm going to hang on with the

लोकल जो प्रतियोगिता है इसमें हमारे बोकारो के सभी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में चाहे क्षेत्र में कृषि के प्रति लोगों में एक उत्साह का वर्धन होगा। कृषि भारत की परंपरागत खेल है,

अप्रदेश में स्वर्ण लिखे किरे में स्थित कोलिका का शांतन मंत्र की तर्क थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं बहुत छोटा

chiama, Señor.

सेवा ये शिष्य जी ने घर का कितने लोग कार्यक्रम सुनाए आप कर रहे हैं। सभी टिकट बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का आज जन्मदिन है। उन्होंने बॉबी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज भी सक्रिय हैं। अपने सहज अदाकारी और अगर आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज का आज के संकार कार्यक्रम केंद्रित है डिंपल कपाड़िया पर। इसे आप सुनेंगे।

0: चलेंद्र सिंह की आवाज थी। विठल भाई पटेल का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना लक्ष्मी कांत प्यारे लाल की तरफ से। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एस्टिमेंट फ्रॉम डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम से नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी।

वेरिफिकेशन और सेकेंडर सरकार के आवासों में जिसका है सेकेंडर सरकार और जाके संगीतकार महसूस सकती है। जैसे बात की राष्ट्रीय इस्तीफा पर इस तरह से रही है कुछ लोग कार्यक्रम

0: का एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को जीवात दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग न करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपना कर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। इसके लोग कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और संदेश। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा छह में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रहने उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय प्रयाग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रकाश सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा खाई में लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है। शेष कुशल
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं सिर्फ ये लोग कार्यक्रम।

ですよ。次の人に言うと、ね、すごく高く、すごいといいって言われたんです。

व्यक्ति अपनी खूबसूरती फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई न कोई फैसला तो करना ही था। स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई

Daniel's daughter made

1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला और फिर 1993 में डिम्पल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाई,

दूरबीन से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में वो भी कम दमदार नहीं है। लव बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल, ये था आज के फनकार कार्यक्रम के अंदर।

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एस्टिमेंट टू अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर,
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाते तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना खोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें आज जो शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए

जयपुर का ये विविध भारती केंद्र है एफएम के 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। केवल शब्दों का संसार नहीं होती बल्कि वह एहसासों की ऐसी दुनिया है जहाँ दिल की धड़कनों को परवाह। आज के इस अंक में हम सुनेंगे गजल गायकी के बेमिसाल फनकार उस्ताद गुलाम अली की कुछ ऐसी गजलें जिन्होंने वर्षों से संचित प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है।

दिलों की नजाकत और आवाज की मिठास गजल को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देती है। सदा गुलाम अली साहब ने अपनी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई और गजल की नफासत पर ऐसा संयम किया कि हर प्रस्तुति यादगार बन गई। अब बढ़ते हैं।

करते समय जबल गुलामी और महिमा का दोष आदि। दोस्तों जीवन के संघर्ष संवेदनाओं को जिस खूबसूरती से यह गजल बयां करती है वह सीधे दिल से खो जाती है। कहते हैं कि अच्छी गजल वही होती है जो सुनने वाले को अपने अनुभवों से जोड़ दे। शायद यही वजह है कि गुलाम अली साहब की गजलें समय की सीमाओं से परे जाकर आज भी उतनी ही

उदाहरण है। सुबह संगीत हमारे जीवन को संवेदनशील बनाता है, कुछ पल अपने लिए निकालना और अच्छी जगहों का आनंद लेना भी जीवन की खूबसूरती का हिस्सा है। तो ठीक है, कार्यक्रम की

मैंने प्रकृति के साथ कार्यक्रम उस्ताद गुलाम अली साहब की इन चुनिंदा गजलों ने आपके मन को अवश्य छुआ होगा। आपकी पसंद आपका स्नेह ही हमारी प्रेरणा है। इसलिए मेरे के साथ की अगली मुलाकात में फिर किसी नई कशिश और नई संगीत यात्रा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी आदित्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर को सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए देश के साथ देना चाहते हैं आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1-1-0

Ali isto je sasvim

नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। कैसी आवाज, जिसका बटवारा भी छेड़ा और इस नए भारत को बन के दिखा। आज मैं बिना आपको सफर पर ले चलूंगी, बॉम्बे के उस छोटे से रेडियो क्लब से लेकर देश के

Thank you.

14 में कहानी की शुरुआत होती है 1923 से। उस दौर में भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ग्रीस को नई नई थी और कुछ उत्साही लोगों ने मिलकर यूरोप का जिनकी पहुंच बहुत कम थी।

dan dihukum. Abah tu saya mungkin tidak sempat dan dihukum.

चाहती ली ऑल इंडिया।

साल 1936 को एक बहुत ही नया और खूबसूरत नाम मिला, आकाश भाई। जब ये इनका सुझाव था, ये सुझाव था मशहूर कवि हम आकाशवाणी की बात से कहानी रेडियो की अधूरी भी रह जाएगी, क्योंकि ठीक इसके अगले साल यानी 1957 में ही सेवा की शुरुआत हुई।

रेडियो प्रेमियों के दिल पर रात आज यही आकाशवाणी।

शरीर का वो हिस्सा जो हमारी हर सोच, हर विचार, हर भावना और दिल की हर धड़की को महसूस करता है। ना आँख देखने की इजाजत कर सकेगा, ना नाक सुनने की या सांस लेने की, ना हाथ ढंग करने की, ना पैर चलने फिरने की और ना ही जुबान बोलने की स्किल दिखाएगा। यानी शरीर के हर एक अंग को सिग्नल देने वाला शरीर आजाद है, यानी हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। आजाद क्यों? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में हम जागरूक करते हैं कि हमें हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को रखा जाना चाहिए। साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका मकसद था लोगों में दिमागी सोच की जागरूकता फैलाना। जब भी वो और ज्यादा हो, अच्छी सुविधा आने लगे, बिना वजह उलझे, जी मिटाए, दौरा पड़ने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी, सड़क हाथ पैर लड़ाने लगे, सिर चिड़ापन जैसे लक्षण है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के

की मेहनत से जमकर लंबी समय तक

जून 1957 को अपने जीवन करियर को मात्र 16 साल की उम्र में ही बॉबी फिल्म में लीड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनकी मासूम छवि को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और राज कपूर की इस फिल्म ने उन्हें वो प्रसिद्धि वो पॉपुलैरिटी दिलवाई जिसका सपना हर की उस समय से उन्होंने परिवार और बच्चों को शादी शुदा जिंदगी की चुनौतियों को दरकिनार किया कामयाबी के बाद उन्होंने काम किया अहम पड़ाव रहा फिल्म रिदारी जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए

temps obtenu pour être fitness really standard to be started on this fitness from जून 1975 को कर्नाटक में जन्मी शिल्पा शेट्टी का असल नाम है अश्विनी शेट्टी, आज उनका जन्मदिन है। शुरुआती दिनों में पिता के काम में हाथ बिताने के दौरान एक फैशन शो में ली गई उनकी तस्वीर ने उनके लिए मॉडलिंग का रास्ता खोला। फिल्मों के ऑफर भी आने लगे और 1993 में बाजीगर से बॉलीवुड में शिल्पा ने धमाकेदार एंट्री ली। लेकिन एक बहुत ऐसा भी आया शिल्पा के करियर में जब निराशा का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय डट कर उन परिस्थितियों को पार किया और फिल्म धड़कन से वापस कर फिल्मों पर आ गई। आज शिल्पा शेट्टी की लोकप्रियता सिर्फ है। ब्रिटेन के डायरेक्टर

हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने

0: मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस क्या भी चाहोगे अपन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: संपर्क कैसे करो?
1: मैं बताऊ, नंबर नोट करो, 8700142।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700142। पर
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के बदलते हुए प्रोग्राम में का हर पर जिनके बारे में सिर्फ 5 मिनट।

0: बिहार से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमल जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा हाई ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

बाबा हर गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देखी।
1: अच्छा तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ क्यों नहीं, सखियों में नहीं सखा भी सुनते हैं। सोमवार से शुक्रवार

चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये रहस्य और रोमांच से भरी लहरें इसकी रेतीली जमीन पर टकराती है, आवेग से आती है और टूट जाती है, जाते हुए अनोखी सौगात हमें दे जाती है, जैसे सीप, शंख, मोती। शाम होती है, सैलानी चले जाते हैं, पर वे अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। उसका दिल तो देखिए, सबको अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रकृति का अटूट समर्पण है ये, मन के भीतर भी लहराता है और बाहर भी अस्थेलियां करता है। बताइए क्या है उसका नाम? जी हाँ, उसका नाम है सागर। आज वर्ल्ड ओशन डे, ओशन से यानी कि विश्व महासागर दिवस है, तो इसी अवसर पर आज हम बातें करेंगे सागर के, समंदर की। बहुत सारी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे, लेकिन वो प्रश्न हम आपसे कुछ देर के बाद पूछेंगे। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि ये धरा का वह अनंत आंचल है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन है। इसका संगीत कभी लोरी की तरह शांत होता है तो कभी तूफान की तरह रौद्र रूप धारण कर लेता है। सूर्य की पहली किरण जब इसके सीने पर पड़ती है तो मानो सोने की चादर बिछ जाती है। वो इंसानों के लिए प्रदूषण को भी अपने भीतर समेट लेता है। ये बिना थके हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि पृथ्वी का हृदय है। ये बादलों को जन्म देता है और नदियों को अपनी बाहों में समेट लेता है। इसके किनारे खड़े होकर हर इंसान इसकी विशालता में खो जाता है। जी हाँ, बात जब विशालता की आती है तो किसी भी चीज का आकलन हम करते हैं या फिर एक उसका कंपेरिजन जब करते हैं तो कहते हैं सागर की तरह। सागर की तरह गहरी आंखें, सागर की तरह गहरा दिल, सागर के जैसा गहरा प्यार, और भी बहुत जगह जहाँ पर हमें बहुत गहराई दिखानी होती है तो हम उसकी उपमा सागर से करते हैं। ऐसी और कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी बातें हैं जब हम कहते हैं कि ये तो सागर जैसा है? जी बताइएगा हमें। सबसे पहले आपको सीमा फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज किसकी है आप हमें

सुरीला सफर। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आज की इबारत जो है वो आपको बता देते हैं। खारे पानी का विशाल जलाशय, दूर से देखो तो मन मोहने वाला नीला रंग दिखाई देता है, जो पृथ्वी की जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तापमान को नियंत्रित करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जीव इसमें पलते हैं। परिवहन, व्यापार और वाणिज्य के लिए भी ये आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा और खनिजों के स्रोत है।

रचना एक साथी हमारी लिख रही है कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तेज में बंदित होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समंदर शोर ही करता है, सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समंदर की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है, फिर भी

कुछ मामले में पीएमओ ने कोर्ट से झटका लगा है।

0: नजर आ रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रस्तुत उन्होंने दावा किया कि चुनावी लड़त भाजपा के पक्ष में है और पार्टी समर्थित
1: सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर

0: मैंने रिव्यू करते हैं पदाधिकारी और जवान ड्राइवर, उन सभी का एक मीटिंग बुलाया गया था जिसमें सभी को उनके दायित्व के बारे में बताया गया। किसी भी तरह का अगर आपराधिक एक्टिविटी हो रहा है, कोई असामाजिक कार्य हो रहा है, तो उसके प्रति इंटेलिजेंस डेवलप करना
1: पूरे होने पर राजभवन में विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। शिविर लगेंगे, साथ ही अस्पतालों और एफ आर यू में विशेष पी एम एस एम ई सर्कल चलाकर गर्भवती महिलाओं

योग के नियमित आयोजन से लोग निरोग हो रहे हैं। पक्षी परिवार की ओर से योग के

and I said, that's right. And she said, that if it's the mic that comes on the side, that's why we don't get to see the vibe of the industry. It's confused, so there's some of our people who are split. This is what she thinks when I told her, getting the item to the last supper. It's the time for Sunni to me, and I told her, with the dark of the rest of the seven for us. सबसे बड़ी है ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का गाना आपको सुनवाते हैं गाना है सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री कौन है उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जावेद अख्तर के बोल संगीत आर डी परमल का

जैसे आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तक से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवन के दर्पण में अनगिनत कहानियां रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर की बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन के साथ हुए दिखाई देते हैं। वो वाहन कौन

मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी तस्वीर क्या सकता है, इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है, जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रंगोली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जी, जय की शंकर

किनारे से टकरा कर लौट कर जाती है, लेकिन हार कर नहीं, फिर फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिखने के आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय है हमारे, ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाए तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाए, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीजों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या देख पाएगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को दहला नहीं पाएंगे। दिल किया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज़, शकीब

है हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो संदेश देती है मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें मन को विचलित न होने दे। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबा का वस्त्र प्रकृति का साथ, शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है, सीख की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है, मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी बह सके। समुद्र कहता है बहते रहो ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत, प्रकृति का अटूट समर्पण मिल कहता है जो प्रेम में डूबा हो वही

और अब प्यार का सागर इस फिल्म का गाना हम आपको सुनाएंगे। आशा भोसले और मुकेश यावा के प्रेम भवन का लिखा हुआ गाना रवि का संगीत कौन से दो कलाकारों का फिल्म माना गया है

आपको सुन रहे हैं। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डाल कर बैठे तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर बहुत दूर ले जा रही हो और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियाँ दे रही हो। बस फिर क्या, हमारे मस्तक से परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती है, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं। तकदीर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और साथ में कुछ और भी आवाजें सुलक्षा पंडित, तर्मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाजें हैं और आनंद वक्षी का लिखा हुआ गाना है ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं

साथ ही हमारे दिखने के सागर किनारे जब शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों की किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का सोलह श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिखने के महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपनी सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एस पी बालसुब्रमण्यम और हल्का याद की आवाज में संगीत बोल नदी श्रवण का संगीत।

2015 में उतनी ही अच्छी लगती है और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना कैसे आदमी के बोल संगीत कल्याण।

नमस्कार दोस्तों, आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है। आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोच कर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन किसका रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी

मधुर हमला बेटा घर सुनना सुनना है मन में धूम करूंगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है

देश रहा है, जहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो ढूंढते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ

को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। सभी तो कहते हैं गोधन गजधन बारी।

योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पांच लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल योजना को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य सेक्टर शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 26,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बने हैं। इससे लोगों के इलाज में होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, उसी व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग

तो इसका मैं कार्यरत है भाई गाँव और 140 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुँच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग हमारे

having a journey with your goal or suddenly suddenly come. तो जब आज अपने कार्यक्रम में कबड्डी और गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुराने फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, सही लुझानी ने लिखा है और संगीत तैयार किया श्री रामचंद्र ने।

0: करें बताना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आपका 2026 से आवेदन 20 मई से खुलेगा। विवरण के लिए विजिट करें aapka.edcii.co.in।
1: खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले मेरी झलक में देख लूँ कि वैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं,
2: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा हाइये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है।

0: The thing is, asking in mind, that's when some savages said, "Didn't happy by that."
1: मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीत प्रति किया। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जाइयो।

कुछ दौर की आवाजें, दिनों की अनूठी पर

0: की हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रहने उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय चिराग रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, दक्षिणा की हालत वैसी है।

0: सातवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाभा नगरी कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ के बोल सपन जगह।

Eu acho que é mais tarde.

0: कर नमस्कार मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। मंजर जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा एनर्जी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, हमेशा ही क्रम कहते हैं बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती है तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
1: बिल्कुल।
0: फिर वहाँ जाती है तो क्या छोड़ कर आती है और क्या लेकर आते हैं? देखिए, हम जो है उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए। तो अब से हम जाते हैं और रेत जो होती है उनका कि वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा। ये सावधानी हमने ये कहा जाता है कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, यहाँ का मालूम है बिहार के निवासियों को और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है वहाँ जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में रहते हैं और कहीं पर ये भी सकती है। और कुछ ऐसी जगह खासतौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहाँ पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहाँ पर खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है। और

0: पार की जाती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए कैसे है।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं या वहाँ से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज़ जैसी चीज़ होती है या आपने धोने में कोई चीज़ खा रही है तो वो सब वहीं पर छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है और आपको वापस देता भी है, वापस कलेक्ट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है। तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूँगा। हाँ, तो समुद्र ये इस तरह से मूक भाषा में ये कहता है संदेश से। तो ये मत करिए जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला उस पानी में और एक पॉलिथीन फंस गया और एक कचरा कागज टुकड़ाया कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा भी नहीं आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो बात करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथिन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आस पास जो आपका कचरा डाल उसमें डालिए, या वहाँ पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहाँ समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए। और बारिश के मौसम में समुद्र के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है अक्सर बीच जो कहा जाता है वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहाँ पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है, और वहाँ पर जो युवाओं का झुंड है अटक जाता है और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो ये अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, कटे मीठे अनुभव साझा करें। मजा ये इसलिए कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं तो उसकी वजह अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुँचाएंगे। आप क्या करें,

0: की कचौड़ी तो सिर्फ उसके बारे में और एक विषय हमारा है कपास से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लेक्चर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारती के पेज से वो भी लेकर भेजे और धरती की धड़कन है महासागर विश्व महासागर दिवस पर वो हमने बताया दिया है और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे और कपास से बोलने की जो आदत है कई बार लोग कपास से बोलने के चक्कर में तो गलत बोल जाते हैं
1: बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली गोली कभी वापस नहीं आती है। जब बोली तो सोच समझ के

भूषण इसका भाग दे। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट से जाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अंतिमी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना

हुसैन था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का शत्रु भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इसकी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। तो विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य

0: सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूप हीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला सुसार था। मंगला सुंदरी न सही पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देखी थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़े सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

पंखा चलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सिरसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज़

0: ये क्या बेवक्त की कहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की कोशिश है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। छोटे भर तो सुन चुका ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं, क्या व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है।
1: अंत को न रहा गया, जलान खाने में आकर बोले
0: कि तुम लोगों ने क्या चाँव मचा रखी है, कि गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
1: सन्नाटा छा गया जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मकसद पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गए। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
2: अभी क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
0: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
2: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
0: रसूल की मत,
2: तुम से मतलब
0: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
2: तुम
0: सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
2: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें उनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
0: ओह

0: तुम मेरे कामों में दखलंदाजी क्यों करते हो बोला?
1: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
0: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
1: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो? मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें?
0: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में कैसे रहूंगी? अब तक भ्रम देखी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
1: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा ये मतलब नहीं था, खुद का खुद समझ गई तुम तो।
0: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास से निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छुपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वही छोड़कर बाहर चले आए।

पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जरूरत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं।

पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुलिस उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी। एक गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहाँ शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़े हो गए और मंगला

0: टीचर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
1: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं, पूछा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज से तुझा जन्म की भी कोई आशा नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही।

अपनी लालसा को कृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुके थे। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

कर्सन है महासागर से, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय पीड़ा, असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है। बिल्कुल सही कह रही है, महासागर जैव विविधता का मूल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियाँ समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप लोग यही मुंबई जहाँ पे भारतीय का स्टूडियो स्थित है, यहाँ के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियाँ सूखती रहती हैं, तो भी उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नई लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समुद्र में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं। जो हमारे साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, बस मछली तो वहाँ पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागर से पाए जाते हैं। मिलता है ना, जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है उनके लिए ईंधन का साधन है और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी, आज महासागर संकट में प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय ऐसे नहीं काट गए तो इसका प्रभाव

सचिव ने जिन्होंने लिखा है कि समंदर नदियों और तालाब में रजत का आकर्षण छिपा है, ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। राज्य चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में नहीं नदियों तालाब और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ उठती है तेमिल हिलोरे और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा करना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की बात सुनी तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि

0: हमारी एक और सीटिंग है जो आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है, जो मनमोहिनी का काम करता है। इसकी अपार सुंदरता बर्बर से आकर्षित करती है। दूध की आते शुभ्र उर्ज जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पाँव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। इससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भैया, बड़ी
1: अच्छी
0: भाषा में ये बातें लिख रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और मंजिल जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समुद्र की लहरों को उठती गिरती देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान के लिए सिफत होती है। जब बहुत ऊंचाई पर जाए तो कभी भी रोज नहीं करना, क्योंकि इसी तरह की बात हमारे श्रोता भी लिखे हैं, हमारे सखा है ये। उन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती है, ये कहती है कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती है लेकिन हम सब जाए तो वहाँ स्वच्छता और साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उठते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना। जब
1: ममता जी तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि आपकी जो कलम चलती है तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी। इसमें से लहरों पर भी खाती है और जिससे भी लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं जी तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, से महसूस करें, हाथ के साथ करें तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हमी से जुड़ी हुई है, हम उनसे जुड़े हुए हैं।
1: इस तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति के अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: इतनी सारी टिप्पणियाँ हैं मंदिर जी, क्या
1: लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियाँ हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ, महासागर को एक पेशक है हमारे मित्र, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस घर के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती

0: पहुंचाने में लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है। हमारे ऑक्सीजन को मुक्त हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जल चक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है। ये एक जीवन रेखा और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विचार रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस ऐसी की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है। मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसी का जीना
1: क्या बात है। अब देखते हैं कि आनंद बसु साहब ने इस गाने में समुद्र के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने सर दिया है और

0: जाने वाले हैं। आपने मुझे बोले नहीं कि कहते हैं, लेकिन यही तो बात होती है कि क्या हम लोग आपसे सवाल से ये दुकान से बोला हुआ सवाल से बोल लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना सफा से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: इसीलिए बोलने की बात पर उन्हें बताया जाता है तो आपने तो सही किया, लेकिन आप बदला की कपास से बोले तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो जानकारी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ऐसा था।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला आपने बिना सोचे समझे जिनकी बात का क्या है मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है वो तपाक से बोल देते। तो इसका असर जो तीन सुन रहे होते चार के बीच में आपने चौथे हाथ में आपने बोल दिया जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इससे किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं सपाट से बोलने वाले कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इससे नुकसान भी होता है। लोग गलत समझ सकते हैं कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है उसका सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ममता जी

हैं और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन जाकर जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती और अपनी बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता। मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए सपाट में, बिल्कुल तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक सोचा ने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, सपाट से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, सपाट से मत बोलो। हमारे साथ लिखते हैं कि सपाट से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ से बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी छुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथ लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तबाह से ऐसा कोई आप शब्द प्रति शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद प्रवाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार इसमें बढ़ता है। और हमारी इसलिए उन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलत फहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बन जाए, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है। और हमारे साथी जिसे और भी लिखते हैं कि सवाल से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वही सपाट से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात बातचीत का उद्देश्य मित्रों आपके रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ सपाट से बोली गई बात आपको जब आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है सपाट से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच से न काटे। आज तो मंजरी जी ने हमें कहा कि सपाट से बोलने के लिए वे मैं मान गई हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हूँ, तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है। तो अच्छी बात है, अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है। बिल्कुल, तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोले और चिंता में और गुस्से में न बोले। और भी बहुत लंबी टिप्पणी उन्होंने लिखी है। देखिए एक बड़ा संदेश मिला है मुझे ममता जी, कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है

0: पड़ोसी की पति से लड़की पड़ोसन के पापा से बोलने की आदत को ताजुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है। मैंने तकलीफ में पहुंचा
1: वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप उठते ना फटाफट फटाफट ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोचने पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं देखा है कि वो भी बहुत तेजी से फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात
1: है, क्या वजह है? मुझे लगता है कि

0: देश के पास से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी। उनकी रेसिपी से बता रहे हैं, बनाते हैं
0: बनाती है।
1: वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है,

0: छोटे चम्मच गर्म मसाला और एक छोटे चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार और बड़े चार बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाने के सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए। और जब आपके हाथ में दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें। और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। और आपके कढ़ाई में तेल गर्म करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें। सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से। हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको खिलाने रखें। आप कचौड़ी की जो आटा खाना है उससे लोलिया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबा कर बेल लें, या फिर आप आटा तेली से दबाएँ या बेलन से बेलें और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आँच पर आप इसको तल लें। ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियाँ
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं और मंजिली जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रो फोन पर कह दिया है ये बात। अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाए ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए बरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें। आधा कप धुली उड़द की दाल, चार पाँच घंटे भी भुनी हो जो, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और चौथाई एक छोटा चम्मच चीनी या तीन से चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं। छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर और एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार दो बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बरावन कैसे बनाए, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें। कढ़ाई में तेल गर्म करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें। अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी डालें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल के बरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें। इसको आलू की पत्ती सब्जी और चटनी के साथ

की आवाज से और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बताए या गाना सुनवाए। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी

Thank you.

0: जाता है उसका असर कम हो जाता है जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले से उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम ये कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सबके कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर सब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरे वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4 बार 5 बार इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है जिसके कारण की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: जैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए। जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देते
1: हैं। यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल है या जो प्री डायबिटिक नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए।
0: श्रोताओं को मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरी जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसी के कारण। $50 तो गाने का नाम है तू मिले दिल के लिए फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम जब रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: प्रादेशिक समाचार प्रोग्राम हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के शाम के 4:02 हो चुके हैं।
1: डायबिटीज मेलिटस होता है तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ही इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते। इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है जो कॉमनली पहले एडल्ट में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन

0: के लिए। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाए आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंस या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार उनको एमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है, या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्टन शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट राय ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट, हम पूरा पिक्चर देखते हैं, ना कि सिर्फ रिपोर्ट। तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट राय ली हो और बाद में पता चला हो डायबिटीज नहीं है?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो पिछले तीन महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये 5-3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है। तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उससे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है, और एक की पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं जैसे स्पेशल कंडीशन पर, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
0: डॉक्टर, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और इसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बता दी कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की जरूरत नहीं है, पर अगर डायबिटीज के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होकर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिस कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पर मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी, क्योंकि लक्षण उसका नहीं है, ये आप देखते हैं पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ेगा। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफ का डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आदि उनको एडिक्शन है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं, और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को

0: काफी अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है वो दूर होता है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे एमबी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।

0: कि जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है कॉमनली हमने जैसे बोला ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि उस मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें स्वीट का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सकें।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए क्योंकि बच्चा है, वो बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसका कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, किसी इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और इंफेक्शन ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट में भी रेस्ट्रिक्शन है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ है अगर हम न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दें तो उसके कारण ये डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, इसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस किया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि टीम से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जेनेटिक एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, पर जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियाँ नहीं दे सकते, अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल देखेंगे, उसकी पेप्टाइड लेवल देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज है तो ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ इंसुलिन की इंजेक्शन पर हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में है, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा?
1: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी

चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहे, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है, मधुमेह

0: हद तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, गड़बड़ लेकर आती है।
1: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, पर अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती है, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफ स्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रह जाते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टी वी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20-25-30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशन। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमीन पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
2: कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आपका 2/2026 के आवेदन 20 मई से खुलेगा। विवरण के लिए विजिट करें।

0: शास्त्र से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं। लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य में आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उस पर आप रिस्क पे हैं, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि हैं, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में या आप स्ट्रेस ले रहे हैं। मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गाँव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन आ जाता है उन्हें। तो ये सब डायबिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे जाके ये पेशेंट ये मरीज को डायबिटीज हो सकता है।
0: फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन तीन भाई या बहन है, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, दो को नहीं हुआ।
1: डायबिटीज से फैमिली हिस्ट्री रखने की होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये कुछ इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि भाई अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में देते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं इससे बचे नहीं, लेकिन उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत है आप?
1: बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल है, भाग दौड़ वाली, मुंबई में जो हम भाग दौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफ स्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी

0: है कि गांव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, तीसरे से बाहर लो, तीसरे से दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो। क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर सोच बताया है कि मुझे एक प्रश्न ही ना करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो करोड़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उनसे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर। ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब उसके कॉम्प्लिकेशन आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन सेटिंग हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी फिल्टर है, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट को आगे जाकर दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट को कम उम्र में कैटरेक्ट होता है, ऑपरेशन के लिए सही हो सकता है, पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी का प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट डायलिसिस पे ही लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि अपने हाथों की जो जलन बताइए, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व है वो कमजोर हो जाते हैं, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट को पैरों में सेंसेशन नहीं होता है। काफी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है और डायबिटीज के जो मरीज है ये काफी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशन होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?

0: अपनी फूड क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल, तो आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फूड है या कभी कभी फ्लैट फूड होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें। उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है कि मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा।

0: यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफ स्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज से भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम हो रही है। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें

0: बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, पर बाकी छह दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट कीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट को सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स और कोल्ड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग ब्लॉक जो ब्लॉक होता है उसे कम लेना चाहिए, और तली हुई चीज़ें फ्राइड स्टफ इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
1: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है खा सकते हैं, लेकिन इसको पचाइए भी। अच्छा डॉक्टर, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं या ऐसे केमिकल्स है जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि कैफीन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं पर इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उसकी शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की दिल तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या चबाती देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफ स्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरी इंडिया के श्रोताओं को। ये एआर रहमान साहब का बहुत ही लॉन्ग पे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।

0: भी भक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था गाना चल रहा है, और चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इससे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और किस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहत नामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

0: के पास है दिल्ली। बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके नहर उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं कि अगर फिर मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय सिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है।

0: को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा आइए लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जगतीय आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के मुख्यांश हम बोल रहे हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर

0: की पार्टी दिल्ली। बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके घर उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और झलक में देखूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज की

0: परिसर आया किशोर कुमार ने अमित खन्ना का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे देश पर दिल्ली के समय से। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री नीतू प्रदीप साझा कर रही है अपनी किताब कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14

0: शर्मा नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं राजवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1100
0: मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़ने के

0: interesse. Gli anni non ben stato, però invito a far da internet.
1: घने बादलों को छू रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: पहाड़ों की चोटी से लेकर दूर गाँव तक

Thank you.

आपको जो हमें पूरी उम्मीद रहेगी हमारे जो प्रतिनिधि स्थानीय भी है और पहली बार कोई दलित राष्ट्रवाद जाएगा तो उनको गंगा स्वामी की पटरी वोट करना चाहिए।

से भी कहां से लाइएगा। तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं किया, हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई पचमा हाथ मानेंगे। पहले भी यहां से दो दो बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं। तो

करीब देश के सभी जिलों में सपा का रैंकिंग चल रहा है कि दो शहर जितना अच्छा होगा फीडबैक के आधार पर जनता जो वोट करेगी उससे उनकी रैंकिंग होगी और फिर जैसे देश में उनका नाम होगा उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। इंदौर हमारा पलना बताता है हम चाहें कि छोटे शहर में हर बार गिनती होती है हर बार टॉप 10 में आ जाए क्योंकि हमारा प्रयास हो गया है।

0: पूरा रात भर या पूरा जहाँ भी दिन होता है उसके हिसाब से वहाँ पे वो ट्रांसमिशन होते थे। उसके बाद शादी हो गई और हम आ गए मुंबई, आकाशवाणी मुंबई आई। बेबी बहुत छोटा था, 8 महीने का। तो बॉम्बे की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है एक्चुअली, बाहर वालों को शायद चमक दमक, मगर बॉम्बे की लाइफ बहुत टफ है। आपको घर सारे साथ छोड़ना पड़ता है और शाम को सारे साथ 8 बजे तक आप आ नहीं। हालांकि मेरा ससुराल बॉम्बे में है इसलिए हम बॉम्बे आए और सब अच्छा था, मगर ये जो वर्किंग आवर्स उस समय जो मुझे बहुत टफ लगता था बेबी, छोटे बेबी के साथ
1: बिल्कुल। और मुंबई में अरोज पड़ोस नहीं होता तो इन बेबी के साथ नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है।
0: तो फिर मैं जयपुर चली गई। जयपुर में भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा, वो तो संगीत की खदान है जिसे कहते हैं जयपुर में, बहुत म्यूजिक है पूरे राजस्थान में, कलाकार फोक म्यूजिक बहुत ज़्यादा था, लगभग 400 कलाकार थे मेरे।
1: राजस्थानी लोग भी बहुत अमृत है,
0: बहुत ज़्यादा, बहुत वहाँ की 4-5 तरह की भाषाएं हैं राजस्थान के अंदर, एक ही भाषा नहीं है।

0: तो मैंने यहाँ से जब ग्रेजुएशन किया बी ए ऑनर्स मुझे, तो वहाँ पे मेरी मौसी ने मुझे बुलवा लिया। तो धीमे धीमे फिर क्या होता है कि पूरा परिवार पहुंच जाता है ना आमतौर पे,
1: तो वहाँ हिंदुस्तान को कैसे याद करती थी, क्या याद आती थी?
0: वहाँ पे मुझे बस अपनी मिट्टी याद आती थी, अपना खाना पीना खुशबू, अपनी सड़कें, चाय कहीं पे धूल उड़ रही हो, क्योंकि वहाँ का तो एकदम सुना सुना सा होता है। अपने गाड़ी में बैठो और पहुँचो रिलेटिव के घर में या

0: को बहुत मिस करती थी, अपने फैकल्टी को जान सीखते थे, फिर अपने गुरु जी। तो हालांकि गुरु जी से हम लोग बहुत डरते थे, जब हमारा नंबर आने वाला होता था तो हम लोग की छुट्टी पिट्टी घूम रहती थी कि अब जाना है हमें अंदर, हमारा नंबर है। मगर बहुत ज़्यादा याद आता था, लगता था कि ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, हमारी ज़िंदगी हमारी ही देखते हैं।
1: और बात आपने गुरु जी की कही, तो गुरु जी से रागों की बारी क्या, संगीत की बारी क्या, कैसे सीखी है उनके बारे में?
0: हाँ, वो गुरु जी जो है हमारे उस्ताद अमीर खान साहब के शिष्य हैं और इंदौर घराना से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हम लोग को सिखाया, रागदारी, बोल आलाप, बोल तान, सरगम, जो भी घराने की विशेषताएँ,
1: रियाज करना
0: सब सिखाया। रियाज करना वो हमें देते थे कि ये इतना रियाज करके आना है, इतना सीख आना है, इस तरह से सुर लगाना है, और उसके बाद फिर घर पहुँचा के आना।

0: मुझे तो सब्जी भाजी खाना सबसे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट सच में। वेजिटेरियन डाइट इज वेरी फाइन विथ मी। मगर जो मेरे पतिदेव हैं एक तरह से उल्टा हो गया ना कि वो तो ससुराल में आ गए, अगर नॉर्थ में आ गए वो बम्बई के हैं और वो फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हाँ तो उन बेचारों को तो खुशी मिलती ही नहीं थी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तक अपने पेरेंट्स के लिए हम दिल्ली में रहे, खुशी महसूस करती ना, अब हम अपनी तरफ रुख करें। मगर यहाँ बॉम्बे में बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल हार्ड है, तो हमने फंड भी हाँ और वो डायरेक्टर की मेहरबानी है, उन्होंने हमें दिया वहाँ जरूरत भी थी, तो फिर हम फंड भी चले गए।
1: तो सोनी तो अपने आप में बड़ा ही संगीत है और बहुत लोकप्रिय है, गोए लोकगीत और कुछ लाइए
0: क्या। देखिए बॉबी का जो गाना है ना वो गोए म्यूजिक

तो गोवा से हम विविध भारती ही आए थे और ऐसे दौर में आए थे कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था हार्ट का, इसलिए हम काफी लेके आए थे। मगर एक डॉक्टर के स्टाफ ने हमें इतना सहयोग दिया, पूरा स्टाफ हमारे साथ खड़ा रहा, आते 10-15 दिन के अंदर ही उनका बाईपास सर्जरी किया गया और स्टाफ का जो प्रेम होता है इतना मिला भरपूर।

बोला बहुत अलग अलग तरह की बीमारियाँ जो अनकॉमन स्लीप एपनिया है, क्या आमतौर पर जो नहीं सुनाई देते हैं, ऐसी बीमारियों को भी हमने श्रोता तक पहुँचाया और जो लोग नहीं जानते थे कि हमें जो

0: मेहमान भी किया हमने, विवेक ओबेराय जी सर पड़े सब इतने ग्रेसियस थे, सबने बहुत अच्छे से मजा लिए थे और भी हाँ बहुत सारे कलाकार थे, तो एक बहुत ही अच्छा समय भी वहाँ पे मेरा है
1: और हम अच्छी

0: उसके बाद आप वापस आ जाते हैं मुंबई के लिए। वहाँ उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन होने से असिस्टेंट डायरेक्टर मैं आकाशवाणी मुंबई चली गई और मैं आशाई में गई पाई जो पूरा नॉर्थ इंडिया का जयपुर गुजरात गोवा पूरा महाराष्ट्र और बाद में फिर इधर छत्तीसगढ़ भी मिल गया मध्य प्रदेश सबका आर्काइवल प्रोग्राम मेरे पास आया जिसमें हमने सब आर्काइवल प्रोग्राम को अच्छी रिकॉर्डिंग जो गोल्ड मतलब गोल्ड डायमंड प्लैटिनम इस तरह से हम बांटते थे जो भी रिकॉर्डिंग की व्यस्तता के हिसाब से वो काम करके फिर मैं आकाशवाणी मुंबई गई मुंबई की प्रोग्राम हेड बनी असली काम वहाँ हुआ है
1: जब आप प्रोग्राम हेड बनी तो वहाँ
0: बहुत सारे बहुत ही

बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करी तमिलनाडु से, हमने कलाकार बुलाए, कॉलेजेज में हमने ओबीएस की, हम पोस्ट वार्ड हिल गए आदिवासी पाई जाता है वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग उन लोगों की की, उन लोगों का खाने पीना, उन लोगों ने अपनी सब जड़ी बूटियाँ दिखाई, पत्ते दिखाए, उनका जो आदिवासी जिससे बनता है खाना वो दिखाया उन्होंने, किसान विकास केंद्र है पोस्ट वार्ड हिल में, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे लोग आते हैं, कैसे करते हैं। हम लोगों ने बाइक रैली की, डॉक्टर्स का कैंप लगाया, तो वी डिड लॉट ऑफ वर्क। फिर मन की बात जो हमारा चलता रहता था, सैटरडे में हम पूरा उसकी रिकॉर्डिंग उसको मराठी में ट्रांसलेट करते थे और उसके बाद उसके रिकॉर्ड करके रात को 3-4 बजे घर आते थे। फिर वो अगले दिन 11 बजे बचता है। इस तरह से किया, सबका हम स्क्रिप्ट और सारी रिकॉर्डिंग पूरी सही थी। सीरियल वाइज सौवे में हम लोगों ने पूरा काम किया, सब रिकॉर्डिंग्स का लाइव ब्रॉडकास्ट किया। नेवी डे होता है, नेवी डे की पूरी रिकॉर्डिंग, उनका जो बैंड सब कुछ किया हमने, अपनी कंसर्ट में भी किया, किचन में, संगीत सम्मेलन किए हमने।

कंट्रोल ज्यादा थी, इतना उनका सहयोग था। सब लोगों ने मिलकर खूब पूरी सीरियस से रात दिन हम लोग सोते ही नहीं थे, काम में लगे रहते थे। तो उसका फल इतना अच्छा था कि मन में जो हमें अंदरूनी खुशी मिली, उसके बाद इलेक्शन आ गए लोकसभा के, उससे मैच की, क्योंकि हम लोग जो शिफ्ट होती हैं उनको हमको एक कमेटी के साथ वे करना होता है, उसमें काटना सब करना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि AIR कोड के मुताबिक ही जाए। तो उसको हमने बड़ी सफलतापूर्वक मैं कहूँगी कि किया, और मैं उसके बाद 3 अप्रैल को रिटायर हो गई।

Please, when you push my daughter, I'm going to

0: क्यों कुछ खास बात है मिस्टर मखमला?
1: सब कुछ नहीं मिस्टर रूसा, मैं तो यूं ही कभी कभी आपसे बातें करने लगता हूँ। अब बाकी लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, मैं उन सब

0: Daniel, va a ser todo en el mundo. Entonces, en esta lanza, no es solo yo me pongo la cara.
1: Oh, yo me pongo la cara.
0: Oh, sí. Gunnira Makhanwala.
1: Oh, I see. Except our option here, Mr. Gunnira Makhanwala.
0: Yes, sir. If you have to keep it up ahead, thank you, Mr. Kaya. There's some very cautious about you. I think I should get some money to get up. और एक चीज़ कहीं पर
1: हाँ अभी क्या दिया ही है ना फोटो जरा मुश्किल से निकल पाती है
0: सोचो सही क्या मैं क्या जानता नहीं सर आप फोटो के पास कितना काम रहता है
1: ओह यू नो
0: आई नो सर और आपको इसमें इसी कोशिश के चलाते हैं सर आराम से
1: ऐसा है

0: कहीं कोई बात है सर, तो उस सेवक को जरूर मौका दीजिए बेटा। और वो बाकी तो सर उस ऑफिस के लोग ऐसे हैं सर कि बस कुछ न पूछे, फिर हर उनकी सेवित होंगे, कभी शिकवाए सर तो कभी उसको छुपाए। अब कहा सर बताऊँ सर, अपने मुझसे ज्यादा कहा तो नहीं जाता सर।
1: ठीक है मैं सब सुन चुका हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके ये हाथ में क्या है, समझ में इंटरेस्टिंग।

jalan berkeluar kitchen di yang lain itu seperti itu. Ia bukan ini yang terjadi pada kita. Tapi total odds for you that the shop of chat is the best. But will we know anything out of the way? No, that's what I do. Yeah, go fast, but is he fast? Yeah, is he pushing fast? Pushing fast. Yeah, go up my time to you. लम्बी पर क्या ही नहीं रखते हमेशा प्याज सितारों को बीच उड़ा करते हैं।

भैया फोन करना भले ही एक बार गुनाह हो, यहाँ तारों की तस्वीर देखना कैसे गुनाह होगा? आखिर हमारे बड़े साहब भी तो अक्सर यही सब देखा करते।

0: ਇਸ਼ੂ ਆਪਣਾ
1: ਹਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ

0: है तो आपने देख रखा है
1: जी जी मेरा मतलब ये कि मैंने पढ़ा होगा सर।
0: ओह अच्छा, तो ये भी पढ़ा होगा कि बदले में तीनों व्यक्ति चंद्रमा की धरती से कुछ नमूने ले आए हैं, पता है ना आपको?
1: जी सर।
0: फिर वो नमूने संसार के हर देश में भेज दिए गए, पता है ना?
1: यस सर।
0: लेकिन अब इस मिट्टी को लेकर कुछ लोग

0: कुछ भी हो अब तय ये पाया गया है कि हर देश अपना अपना आदमी जान कर छुटेगा और ज्ञान की धरती पर सारा लेन देन अपने आदमी के जरिए ही शुरू करेगा।
1: दरअसल कहने से ये बात होती है कहने की तरह
0: हिंदुस्तान वालों का कुछ ऐसे ही ख्याल है
1: अगर हम जान कर अपना अधिकार थोड़ी खोने देंगे तो
0: लेकिन बोलेगा मुझे वहां जाकर
1: जाएगा सर वही जाएगा सीमा पर जाने वाले सारे लोग भी तो आदमी थे सर और सर बीवी बच्चे वाले आदमी थे और देश की खाते बना कोई इतना भी काम नहीं करेगा सर।
0: हाँ करना तो चाहिए लेकिन बुनियाद की बात अगर ये है कि वहाँ रह पाना इतना आसान नहीं है। सर पूछा जाए तो मुझे वहाँ भेजे जाने वालों से बहुत हमदर्दी
1: है। ऐसे भी क्या बात है सर इतने अहम काम के लिए अगर क्या जीवन में करनी पड़े तो किसी को हित की क्या मिल

0: जरूरत है कि समझदार आदमी की है जो वहाँ जाकर ठीक से काम करा सके। और फिर जब उसे वहाँ जाकर रहना ही है तो क्यों ना ऐसे आदमी को भेजा जाए जिससे इन सब कामों में दिलचस्पी हो।
1: जो सर आप ठीक हो सकते
0: कुछ ऐसे ही ख्याल हमारी सरकार का भी है, इसलिए हर डिपार्टमेंट में सर्कुलर

0: फैल गई और सब अपने को इतना हुनरमंद समझते हुए भी पिछड़ गए कि किस व्यक्ति मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हम बैठे हैं और दूसरा बाजी मार ले गए। मैं ये बात तो कहीं नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप बर्दाश्त कर सकते होंगे।
1: मतलब ये था कि
0: मतलब कुछ नहीं, जान कर वही आदमी जाएगा जो इसका आदमी हफ्ता संध्या
1: ये
0: तो कौन ने टेलीग्राम दे भेजिए और अभी

poco, cada día en la sombra había no que dolor, porque acabar en parte de la historia, esa que se llama de que había dado una temporada de reunión que es bade hamle ko nakam karne mein asadhar bahaduri dikhane ke liye major aadit ke pratap singh ko sorry sir ke diya gaya lord nayak nimak ke sundaram in ko unke adam sahar ke liye chief chief se samman kiya gaya assembly roop se ghayal hone ke baad unhone jammu kashmir mein 71 atankwadi ko maar giraya tha bharat ke pehle manav antariksh udan mission gaganyaan ke liye chune gaye char gaganyaan mein se group captain prashant balkrishna nayak ko chief chief se samman kiya gaya anupam पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना 5 लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

चंडीगढ़ बैनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋषभदत्त बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सी.के. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जलजनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए 5 अधिकृत देशों की सूची में

0: निश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि कई चरण में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्थर, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जांच एंटी नैवेक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप बीच है या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थे। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके की पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाई रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर राम से पहले हर फैसले से पहले एक सवाल या मैं तैयार हूँ, अगर जवाब देना तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। आप कैट 1 और 22 के आवेदन 10 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक खुले। अधिक जानकारी के लिए करियर एयरपोर्ट पर bov.in/cbcil.co.in पर।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए

0: jsme a všichni jarusba vandan, nadita pokar, lekcharo pa, jevi vitata na cha, janbali dari sami le.
1: Ek me vano ke sangrakshan aur se badhane ke liye 2015 mein Green India Mission ki shuruaat ki gayi. Vartman mein bharat ka van kshetr 5 lakh varg kilometer se adhik ho gaya hai, jo desh ke kul bhavan kshetr ka 25% se adhik hai. Wahi kul van kshetr ke mamle mein bharat duniya mein 9ve sthan par pahunch gaya hai. Iske alawa 2024 mein pradhanmantri Narendra Modi ne ek ped maan ke naam अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है रोज समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वच्छ ऊर्जा

0: उसे हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की सृजन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, FM और डिजिटल स्ट्रीमिंग, हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक के कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोग पर टिकाऊ खेती की और एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अन्य निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

सबसे आवाज कैसे आदमी के बदल की गुलाम मोहम्मद का संगीत है और दिल की आपके लिए सर्दियों की आखिरी पेशकश आज का सर्दी माफी सुना सुनी का शुरुआत करके साथ अभी भी इजाजत मिल

मिट्टी से ही वो कर देती है पॉजिटिविटी की बौछार और दिल खुश रहता है। आज बाद 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती

मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री है बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी है। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती है वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा

मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यही से करने जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई करनी शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभाल

के ये कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वहीं भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी

कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ 1900

उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म

चांदी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सर सिर्फ गाने के लिए भी आई क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है। फिर वो स्कूल का गीत हो या दोस्ताना।

किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थी। वो कुछ अलग करना चाहती थी। शिल्पा जो चाहती थी वो उन्होंने कर ही दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेरॉय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया,

से एक अलग रंगत में ढल गया। जैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुंचाया,

कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चले कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक।

करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो गली जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म भी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना सहन के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे।

लेकर सरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई।

से ट्रिपल सिटी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्म सितारों में शामिल है। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय

रखती नजर आई और फिल्म के स्टार से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शो का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से दूरी की बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीक्षा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद

के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता दुष्यंत फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और तुक्की में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हद से किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनकी फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आई, साथ ही जावेद जाफरी के बेटे निजान जाफरी

तेजा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहाँ उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार

के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिखा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं कि उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें,

दूर घर से दुनिया में बस जाए तेरी आंखों में, महक से दिल का

रहता है ये दिल, धड़कता है

un padre.

can tell